0: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media. Connect and stay ahead with Salam Media. This is Salam Media, coming to you live from South Africa.
1: This is Salam Media live from Johannesburg, South Africa. Jiya, this is Maryam Hashmi with show named Mid-Morning Talk with Maryam Hashmi. Jiya, aaj hum baat kar rahe hain different mauzu pe, different topics hain hamare paas aur bahut achhi guftugu hamare sath jari hai. Hamare sath do guest maujood the. Ab hamare sath hamare aise guest maujood hain jinka taluk direct media se hai. Aur jaise humne break pe jaane se pehle baat ki thi ki media ka kaam sirf khabar pahunchana nahi hai balki sach ko samne lana hai aur logon ko baakhabar rakhna hai. Lekin aapki ek zara غلط رپورٹنگ ایک ذرا سی غلط خبر سے کئی لوگوں کی زندگیاں خراب بھی ہو جاتی ہیں کئی لوگوں کی زندگیاں متاثر ہو جاتی ہیں جبکہ کئی آپ کی ایک اچھی رپورٹنگ سے ایک اچھے امیج سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں تو یہ چیز کا بڑا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ ایک ریسپانسیبل پوزیشن پر ہیں آپ ایک اچھی جگہ پر ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں آپ کی جو ہے خبر کو پہنچانا دوسروں کو آگاہ رکھنا بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں اپنی انفارمیشن لیکن اس کو کریکٹ رکھنا کتنا ضروری ہے اور سم ٹائم جب ان پہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے میڈیا پرسنز پہ ایک پریشر جو ہے وہ بھی بلڈ اپ ہوتا جاتا ہے وقت کے ساتھ تو فیئر رپورٹنگ کرنا وہاں پر کتنی ضروری ہے یہ تمام فیکٹرز ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جس کی بڑی اہم ضرورت ہے ہمیں جاننا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں لندن سے جوائن کیا ہے وائس پریزیڈنٹ ہیں پریس کلب لندن کے زین العابدین ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم زین
2: Welcome, Sam. Thank you so much, Mariam. It's really nice seeing you once again. And ایک فاصلے سے دیکھنے کو مل رہا ہے ہم ایک اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام کرتے رہے ہیں لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے
1: جزاک اللہ جی زین کے بارے میں بتانا چاہوں زین میری کلیگ ہیں اور بڑی ہماری اچھی گفتگو رہتی ہے بڑے اچھے ٹاپکس جو ہیں ہم کور کرتے ہیں اور ان کی صحافت پہ مجھے بہت زیادہ بھروسہ ہے بڑی اچھی جو ہے ان کی کوریج ہوتی ہے تو اسی سلسلے میں ہم آپ سے بات کریں گے اچھا زین ماشاء اللہ یہ بھی میں ضرور بتا دوں اپنی آڈینس کو بھی اور اپنے لسنرس کو بھی کہ زین جو ہے ابھی وائس پریزیڈنٹ ہوئے ہیں پریس کلب لندن کے تو سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی سب سے پہلے تو آپ کو سوری مبارکباد دینا چاہوں گی کنگریچولیشنز آن یور سلیکشن اینڈ آلسو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پریشر کتنا بڑھ گیا
2: دیکھیں دو ڈیفرنٹ چیزیں ایک صحافت اور ایک صحافت کے اندر سیاست تو جب ہم صحافت کی بات کرتے ہیں ایز وی آل نو دیٹ اٹس فورتھ پلر آف اے سٹیٹ یعنی تین پلر جو ہیں آپ جتنے بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں جو کامیاب ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں ان کی اگر آپ بات کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ تین جو پلرز ہیں یعنی جو ان کی جوڈیشری ہے جو ان کی لیجسلیٹو اسمبلیز ہیں جو ان کی ایگزیکٹو ہے یعنی لیجسلیٹو ایک قانون بناتی ہے ایگزیکٹو جو ہے وہ اس پر عمل کرواتی ہے اور جوڈیشری جو ہے وہ جو عمل نہیں کرتا اس کو جزا اور سزا دیتی ہے سو جو چوتھا سب سے بڑا ستون ہے وہ میڈیا بنتا ہے تو جب آپ میڈیا میں آلریڈی ہیں یعنی ایک ستون کو سنبھالے ہوئے ہیں اس سے پیرلل آپ نے پھر ایک سیاست بھی کرنی ہے پالیٹکس بھی کرنی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں بہت سارے ایلیمنٹس کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے بہت سارے دوستیاں ہیں بہت سارے جو چیزیں ہیں بہت سارے معاملات ہیں ان کو بڑا دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے یعنی اب آپ نے جب آپ صحافی ہیں جب آپ صرف پالیٹیشین ہیں تو آپ کی ذمہ داری صرف پالیٹکس ہے تو وہ قدرے آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے آپ کی ایک گراؤنڈ ہے اس میں آپ نے کھیلنا لیکن ونس یو آر اے جرنلسٹ پلس اے پالیٹیشین ان جرنلزم سو دیٹ از دا ڈفرنٹ بال آل ٹوگیدر تو اس میں آپ کو پھر دو تین چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اپنے کولیگز کے ساتھ جو ہے وہ بہت دھیان سے چلنا پڑتا ہے آپ کو ایک ایک چیز اور ظاہر ہے آپ نے مسلسل اسکرین جو ہے وہ فیس کرنی ہے مسلسل اسکرین پہ رہنا ہے تو آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہا ہوگا وہ سنا جا رہا ہوگا اور اس کو بہت لحاظ اور دھیان سے جو ہے اسے بولنا تو یہ ایک پراپر پریکٹس ہے سو دا گڈ تھنگ از کہ آئی ہیو بین پریزیڈنٹ ان مائی یونیورسٹی ایز ویل سو مجھے چار سال کا وہاں کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کام آ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ سب سے بہترین جو عمل ہے اس سارے پروسیس میں جو میں نے سیکھا وہ یہ ہے کہ خاموشی یعنی جتنا آپ خاموش رہیں جتنا کم بولیں وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے
1: सही. अच्छा जैन, ये भी है कि आप माशाल्लाह दो डिफरेंट कंट्रीज में आपने मूव किया है और उनका एक्सपीरियंस भी आपका बहुत डिफरेंट होगा, तो आप जरा इस पे रोशनी डालेंगे कि वहां प्रेशर, अपने कंट्री में प्रेशर होता है या इंसान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, और फॉरेन कंट्री में किसी पोजीशन पे खड़े होना कितनी बड़ी जो है वो जिम्मेदारी बन जाती है, कितना बड़ा प्रेशर जो है वो हो जाता है.
2: देखिए मरियम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. उसमें दो तीन चीजें मैं आपको सबसे मेन चीज बताता हूँ. सबसे पहले ये है कि जब आप पाकिस्तान में हैं तो आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं चीजों में, ठीक है, और डायरेक्टली आप जो है वो पाकिस्तान के मसाइल पर गुफ्तगू करें तो आपको ज्यादा इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है. और पाकिस्तान में रिलेटिवली लोगों को डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है उसमें हम थोड़ा सा पीछे हैं अनफॉर्चुनेटली, और उसमें फिर ये है कि हमारी कुव्वत बर्दाश्त भी उस कदर नहीं है. यानी आप किसी सियासतदान को अगर क्रिटिसाइज करेंगे, उसके ऊपर सवाल उठाएंगे, तो वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा. आप किसी जो एग्जीक्यूटिव का बंदा है, जो कोई एसी डीसी है, उस पर उसकी कारकर्दगी पर सवाल उठाएंगे, वो आपको हो सकता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े. इसी तरह से जुडिशरी में आप ये जो है वो तोहीन अदालत लग सकती है. सो ये जो चीज है, जब आप डायरेक्टली एक मुल्क के अंदर एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो मुख्तलिफ होता है. जब आप किसी दूसरे मुल्क में, अब जैसे आपने तारू में बताया, तो मैं बेसिकली पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन का जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हूँ. तो पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन, इट मीन्स के हमने दो फील्ड्स को देखना है. एक तो ये कि हम लंदन की खबरों को ऑब्वियसली लेंगे, हम यूके के मामलात, यहाँ पर जो सूरत हाल है, जो मुश्किलात हैं इमिग्रेंट्स की, खासतौर पर पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं, उन पर गुफ्तगू करेंगे. इसके अलावा हम जो यहाँ पे वैसे ओवरऑल यूके के मसाइल हैं, उन पर भी जो है वो बात करते हैं. तो मामला ये है कि यहाँ पर थोड़ा सेफ आप इसलिए हो जाते हैं कि ये शायद पाकिस्तानियों के मामलात में उतना जो है वो इंडल्ज नहीं करते खुद को, और ये इतना फिक्रमंद नहीं है. लेकिन पाकिस्तान में आपके लिए मुश्किल इसलिए हो जाती है कि आप जब भी यहाँ बैठे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कदरे ज्यादा दलेर हो जाते हैं, और यहाँ पे जो बहुत सारे यूट्यूबर्स और वो जो हैं वो पाकिस्तान में हर किस्म की बात, पाकिस्तान के हर मामले पर खुलम खुला बात करते
1: हैं. अच्छा,
2: ये चीज पाकिस्तान
1: एहतियात कर दी चाहिए, एहतियात कर दी. अच्छा, सोशल मीडिया के जब हम बात करते हैं, जब भी हम ओपन करते हैं एज अ नॉर्मल व्यूअर आप देखते हैं, तो उसमें हर शख्स जो है वो अपनी राय को एज अ न्यूज प्रेजेंट कर रहा है. तो आप जैसे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या इस पे कंट्रोल होना चाहिए, कि आपकी न्यूज वेरीफाइड होनी चाहिए, थ्रू वेरीफाइड चैनल आनी चाहिए, कि हर शख्स जो है वो अपनी ओपिनियन दे रहा है और उसकी व्यूज की खातिर न्यूज जो है वो बनती जा रही है, तो वहां पर फिर जर्नलिस्ट का क्या किरदार है, या आपकी जैसे प्रेस क्लब लंदन है उसमें आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है?
2: देखिए मरियम, दो चीजें इसमें मेरे ख्याल में दोनों तरफ की जिम्मेदारी आती है, व्यूअर की भी और जो एनालिस्ट है उसकी भी. यानी एनालिसिस बिल्कुल डिफरेंट चीज है, न्यूज बिल्कुल डिफरेंट चीज है. अब न्यूज ये है कि मैं ये कहूं कि जो है वो गली के अंदर एक खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ है और उसमें दो शख्स जान बहक हो गए, ये तो होगी खबर और ये वेरीफाइबल है. यानी आप मुख्तलिफ इदारों के पास जाते हैं, आप उनसे पूछते हैं किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग जो है वो जान से गए, ये सारी चीज होगी. अब इसमें अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि ये लोग यहाँ से आ रहे थे, यहाँ पर इनको ये मामला आया, ये ज़हनी स्ट्रेस में थे, ये वाली कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अगर बंदा मर गया है तो वो अपने साथ ही लेके चला गया ये कहानी. तो ये जो एनालिसिस है, ये जो है, ये इसमें क्या सराई भी हो सकती है, इसमें अपने आप से भी एडिशन हो सकती है. लेकिन जो बेसिक न्यूज है, बेसिक न्यूज हमेशा वही रहेगी कि ये एक्सीडेंट हुआ है और इसमें दो लोग जो हैं वो जांबक हुए. सो जो एक्स्ट्रा एड ऑन चीजें होती हैं, उसमें अब आपकी जिम्मेदारी बतौरे व्यूअर ये बनती है कि आप उसको खुद वेरीफाई करें. और उसमें ये होता है कि आप देखें, अब मामला ये है कि हम ये समझते हैं शायद कि अगर कोई भी शख्स गली में खड़ा होकर वो हमें खबर दे रहा है तो इट मींस कि हमने उसको क्या बनवान उस पर यकीन करना है. तो मेरे ख्याल में ऐसे नहीं है. उसमें ये है कि इतने बड़े बड़े इदारे हैं, अब आप देखें एक खबर बीबीसी दे रहा हो और एक जो है वो गली में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दे रहा होगा, तो आप किसको बिलीव करेंगे? आप क्रेडिबिलिटी को यकीन करेंगे. जो क्रेडिबिलिटी होती है ना, वो चीज है सबसे मेन चीज. यानी जो बड़े इदारे हैं जिनके हर शहर में नुमाइंदे हैं, हर मुल्क में नुमाइंदे हैं, वो बेसिकली क्रेडिबिलिटी के सर पे चल रहे होते हैं. तो इसी तरह से जो है ये सारी मामलात, कोई भी खबर, अब आप एक खबर है, फॉर एग्जांपल कराची में मैं एक खबर देता हूँ जी, के कराची की एक बस में एक हमला हुआ जिसमें एक शख्स ने दो लोगों पर चाकू से हमला कर दिया. अब ये एक खबर है, ये सिंपली खबर है. अब इसको मैं अगर ट्विस्ट करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कराची में एक मुहाजिर ने दो पंजाबियों पे हमला कर दिया। अब ये जो खबर है ये टोटली जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस चेंज कर देगी और टोटली जो है वो उसके जो मामलात हैं वो एक लड़ाई की तरफ चले जाएंगे। और अगर लंदन के प्रस्पेक्टिव से देखें तो आप जो है वो नाइजल फराज के ट्वीट पढ़ लें, जिया यूसुफ के ट्वीट पढ़ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि एक खबर को किस तरह से ट्विस्ट किया जाता है, यानी वो जो कोई फिगर होता है, कोई फैक्ट होता है, उसको किस तरह से जो है वो अपनी फेवर में यूज करने के लिए उसको फैब्रिकेट करते
1: हैं। बिल्कुल, और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स जो है वो हमें यूज करने चाहिए ताकि हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके और हमें वेरीफाइड जो है वो न्यूज जो हमारे तक पहुंच सके। अच्छा जैन, सोशल मीडिया की जैसे हम बात करते हैं, माशाल्लाह बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला है, जैसे कि हम प्रीवियस दौर की बात करते हैं, एक दो चैनल्स थे उनसे हमें जितनी इन्फॉर्मेशन हम हासिल कर सकते थे हम करते हैं। आजकल जो है हर न्यूज हमारे हाथ में है, अपग्रेडेड अपडेटेड हर चीज हमारे हाथ में मौजूद है। आप क्या समझते हैं, क्या ये जर्नलिज्म के लिए थोड़ा खतरा बन गया है या इसके बेनिफिट्स ज्यादा है?
2: नहीं, मैं ये समझता हूँ कि दोनों चीजें हैं, इसका फायदा भी ले सकते हैं, इसका नुकसान भी हो सकता है। नुकसान इस सेंस में है कि जब आप क्रॉस चेक नहीं करते, एक जर्नलिस्टिक एथिक्स में आता है कि आप कोई भी चीज है तो उसको आप मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म करें। अब देखें, हो सकता है कि आपका जो सोर्स है वो भी तो बाइस्ड हो सकता है, यानी अगर आप फॉर एग्जाम्पल पीटीआई की खबर ले रहे हैं, नून लीग की खबर ले रहे हैं, तो अगर आप पीटीआई की खबर पीटीआई के शख्स से लेंगे तो आपको उसमें वो अपना जो एलिमेंट है उसका, जो उसकी एक बाइसनेस है, वो तो कहीं ना कहीं आएगी, वो आप चाहें या ना चाहें। उसके अलावा अगर आप नून लीग के बंदे से खबर लेंगे तो वो एक बाइसनेस तो आएगी। तो बतौर जर्नलिस्ट ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने कौन सी चीज रखनी है, कौन सी चीज नहीं रखनी, और फिर मल्टीपल सोर्सेज से सेम खबर को आपने कंफर्म करना। यानी अब एक जलसा होता है लाहौर के ग्राउंड में और वो आप फॉर एग्जांपल जमात इस्लामी का एक जलसा होता है, तो वो अब जो पीटीआई का शख्स है उसको वो 1000 का जलसा लगेगा, जो नून लीग का है उसको 2000 का लगेगा, जो जमात इस्लामी का उसको 1 लाख की गैदरिंग लगेगी, और जो आजाद सोर्सेज हैं वो शायद आपको कोई एक मुनासिब फिगर 8-10 हजार का बता दें। सो होता ये है कि आपने ये चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम विद ट्रेनिंग वो आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। जब आप आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रेनिंग के थ्रू गुजरते हैं और जब आप पढ़ते हैं मीडिया को, बेसिकली अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया में देखें, मैं भी अकाउंट बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं, कोई जो शख्स जिसको मीडिया एथिक्स का नहीं आइडिया, जिसने मीडिया एथिक्स नहीं पढ़ी, वो भी जो है वो बना सकता है। तो होगा ये कि जब मैं और आप वीडियो बनाएंगे तो हम बहुत सारी चीजों के, बहुत सारे मॉरल एथिक्स का लिहाज रखेंगे, लेकिन जो शख्स जिसको इस चीज का आइडिया नहीं है वो बिल्कुल डिफरेंट। सो अब जो व्यूअर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि इन तीन लोगों ने जो वीडियो बनाई है इनमें से मीडिया को कौन जानता है, एथिक्स का कौन क्या लगता है, तो ये अब उस पर जिम्मेदारी बनती है। सो मेरे ख्याल में इसमें बहुत सी चीजें जो है, अब क्योंकि AI भी आ गया तो बहुत मुश्किल होगी, खासतौर पर उन लोगों के लिए असल खबर ढूंढना बहुत मुश्किल होगी है जो इन चीजों से अभी वाकिफ नहीं है, जिनको इस चीज की वाकफियत नहीं है, यानी उनको यही आइडिया नहीं होता कि AI बेस्ड वीडियो कौन सी है और जो नॉर्मल ओरिजिनल वीडियो है वो कौन सी है। तो ये एक व्यूअर और जो खबर देने वाला, उन दोनों की बाहमी ट्रेनिंग की मेरे ख्याल में जरूरत है।
1: सही। अच्छा, और जो हमारी यूथ है वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है न्यूज से और अपनी रिपोर्टिंग वगैरह जो वो करते हैं, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे जैन कि किस तरह वो रिपोर्टिंग करें अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं? प्रॉपर एजुकेशन लेना कितना जरूरी है, ना कि सिर्फ एक मोबाइल फोन और आप सिर्फ एक न्यूज दे दें, इस पर जरा रोशनी डालें।
2: देखें, अगर एज लॉन्ग एज सोशल मीडिया की अगर आप बात करें तो सोशल मीडिया पे तो क्योंकि किसी किस्म के कोई चेक्स नहीं है प्रॉपर, तो जब आप ये जिंदगी में ये मकसद बनाते हैं कि मैंने सोशल मीडिया पे काम करना है, तो फिर तो आप ऑब्वियसली देखेंगे कि सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनको सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, जिनके सबसे ज्यादा फॉलोइंग है, तो आप उनको फॉलो करना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपने प्रॉपर ऑथेंटिक और जर्नलिज्म में आना है और जर्नलिस्टिक एथिक्स को मलहूजे खाते रखते हुए, यानी उनको अपने जहन में रखते हुए फिर आपने काम करना है, जब आप कोई बड़ा नाम जर्नलिज्म में बनना चाहें, तो फिर आपको ऑब्वियसली एक ट्रेनिंग के थ्रू गुजरना होगा। अब ट्रेनिंग देखें, हम अब ये भी कह सकते हैं कि जो सबसे पहले जर्नलिस्ट थे क्या वो ट्रेनिंग लेते थे, उन्होंने भी तो खुद ऐसी चीजें की। होता ये है कि हम बहुत सारे तजुर्बात जो हैं वो खुद जिंदगी में करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम दूसरे के तजुर्बात से सीख सकते हैं। इंस्टेड कि मैं एक गलती जो है वो खुद करूं, तो हो सकता है कि जो मेरा सीनियर है उसने पहली वो गलती की है और उसने उसको बेहतर करके मुझे दिखा दिया कि ये वाली गलती मत दोहराना। सो द बेटर वे इज मेरे ख्याल में कि जो सीनियर्स हैं आपके जो सीनियर जिन्होंने पहले काम किया है आपको मतलब हो सकते हैं उनकी भी बायसनेस हो उनके भी बहुत सारे जो है वो अपने मामलात हों लेकिन आपने 3-4-5 आप मल्टीपल लोगों को देखें जिनको आप आइडियलाइज करते हैं जिनको आप बेहतरीन समझते हैं किसी एक शख्स पर स्ट्रिक्ट ना हो यानी अगर मुझे किसी एक बंदे का स्टाइल पसंद है और मैं उस पर स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ तो मेरे ख्याल में फिर मेरे अंदर उसका अक्स नजर आना शुरू हो जाएगा तो एक तरह का आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे शाहजेब खान ज्यादा पसंद है और मैं बिल्कुल उनको कॉपी करना शुरू हो जाऊंगा तो फिर होगा ये कि लोग शाहजेब खान ज्यादा कोई सुनेंगे मुझे नहीं सुनेंगे उसके पीछे वजह यह है कि उनके पास एक कॉपी और एक ओरिजिनल मौजूद है
1: नहीं तो बिल्कुल आपका अपना अपना एक स्टाइल होना चाहिए आपकी अपनी एक बात होनी चाहिए आप अपनी एक राय रख सकते हैं अल्लाह सुभान व तआला ने हर इंसान को ये तौफीक दी है ये हिम्मत दी है कि आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और माशाल्लाह हम जिन कंट्रीज में हैं वहां पर आप अपनी बात को जो है वो दुनिया तक पहुंचा सकते हैं बट इन अ राइट वे इट्स टाइम फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक वी विल जस्ट कम बैक आफ्टर दिस ब्रेक सो स्टे ट्यून्ड ऑन सलाम मीडिया
3: राइट नाउ इन सम ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटेड पार्ट्स ऑफ आवर वर्ल्ड Places close to many of our hearts, Doctors Without Borders is delivering emergency medical care where no one else will. Your donation gives a child surgery, a family clean water, a community a fighting chance against disease. This is an opportunity to make your giving count where it's needed most. Visit msf.org.za/sadaqa, that's SADAQAH, and donate today. Doctors Without Borders, we go there.
4: When the perfect blend of stylish decor, exquisite halal cuisine, and warm hospitality come together, it could only mean Al Bayt Lodge, your true home away from home. Al Bayt is the ideal heaven for families, business people, and tourists with its 4-star family rooms and other luxurious facilities. Conveniently situated close to Port Elizabeth Airport, the beach, and other amenities, your stay will be truly unforgettable as you'll be taking home lasting memories of the warm hospitality, the serenity and tranquility that Al Bayt has to offer. For reservations, call 041-583-6415 or visit www.albaytlodge.co.za.
5: In South Africa, countless numbers of sick patients leave their homes at the crack of dawn to join long queues at clinics and public hospitals, many of them suffering pangs of hunger in addition to the symptoms of disease. The Al Imdad Foundation's Slice for Life teams deliver sandwiches to these patients at more than 40 hospitals and clinics across the country. Help us to keep on relieving hunger. Donate online at alimdad.com or call 0861 786243 for more information.
6: Hey, Ghulam.
7: Yeah?
6: Did I return your lawnmower last month?
7: No, bhai, you didn't.
6: Oh, no. Now what'll I do? I wanted to borrow it again, man.
8: With Randree Jewelers, you won't have to borrow or lend because the prices are so well trimmed on all gold and diamond jewelry. Alternatively, we could remake your old jewelry into a brilliant new design. Visit Randree Jewelers at 151 Stephen Slamini Road, Musgrave, Durban. Randree Jewelers, the family name you can trust.
9: Are you banking with convenience, transparency, and flexibility? With Al Baraka Bank's transactional banking account, you can enjoy convenient everyday banking designed around your needs. Benefit from zero fees on point-of-sale transactions and manage your banking easily through Al Baraka's secure mobile banking app and internet banking platform. From everyday payments to managing your personal or business banking, Al Baraka makes banking simple, transparent, and convenient. Visit albaraka.co.za to learn more. Al Baraka, your partner bank. Al Baraka Bank Limited is an authorized financial services and credit provider.
0: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media. It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism.
1: जी वेलकम बैक मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी जी हाँ बात हो रही है मीडिया की रिस्पांसिबिलिटी की और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब लंदन जो है वो हमारे साथ मौजूद है जैन बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन करना चाहूंगी माशाल्लाह आप एक अच्छी पोजीशन पर हैं आप एक लीडरशिप पोजीशन पर हैं मैं आपसे पूछना चाहूंगी ट्रस्ट बिल्ड करना लोगों का ट्रस्ट लेना उसके लिए क्या एफर्ट जरूरी है क्या करनी चाहिए और एज अ लीडर जो है आप किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं
2: मेरा ख्याल है कि ट्रस्ट के लिए सबसे मेन चीज ये है कि उस शख्स से बात की जाए अब और दूसरा ये है कि ट्रस्ट जो है वो मेरे ख्याल में बाहमी अमल है उसमें आप अकेले का किरदार नहीं हो सकता दूसरे शख्स की एफर्ट भी बहुत जरूरी है जैसे अब मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ हजरत अली के बारे में कि उनके पास एक शख्स आता है और वो ये कहता है कि

0: हुआ था तो मेरे पे जुल्म हुआ। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो फैसला नहीं करते, वो कहते हैं मैं पहले दूसरे शख्स को देखूंगा, हो सकता है तुम उसके दोनों बाजू काट के आए। अब बात यह है कि हम जब एक शख्स की बात सुनकर फाइनल फैसला दे देते हैं तो तब मामला खराब होते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन जो तरीका है, जो सबसे बेहतरीन अमल है, वो यही है कि जब भी कोई भी आपके पास मामला आए तो जो बंदा आपको कहानी सुना रहा है, जैसे हमने पहले बात की क्रॉस वेरिफिकेशन की, एक तो क्रॉस वेरीफाई करें और दूसरा ये कि आप उस शख्स की कोई बायसनेस हो सकती है। जब वो अपने बारे में कोई भी शख्स बताता है तो वो हमेशा अपने आप को हीरो और दूसरे को विलन पेश करता है। आपने कई जितनी भी कहानी पढ़ी होंगी उसमें बड़ा रेयर होगा कि जो कहानी लिखने वाला है वो खुद को विलन की जगह पे रख रहा हो, वो हमेशा खुद को हीरो की जगह पे रखता है। सो आपको जब आप इस तरह के एनालिसिस करना शुरू हो जाएंगे, कोई भी शख्स किसी के बारे में भी कोई खबर लेके आता है, तो मेरे ख्याल में बतौर साफी ये हमारे लिए मजीद आसान है कि कोई भी आपको किसी के बारे में बात बताता है तो आप फौरन फैसला ना करें और फौरन उसके सामने ही उसको फैसला ना सुना दें कि वो तो पहले भी ये और ये। इससे इसके बरक्स मेरे ख्याल में ट्रस्ट बिल्ड तब होगा जब बिल्ड फैसला जब टाइम दो तीन दफा आपके साथ कोई इस तरह की बात करेगा जब उसको पता होगा कि आप आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे या आप इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे कि आप दूसरे बंदे को भी पैरेलल साथ बिठा लेंगे, तो जो जो नफ्सियात है अगले शख्स की वो भी काम करना शुरू हो जाएगी कि अगर मैं इस तरह से करूंगा या कोई दरमियान में मामला खराब करने की कोशिश करूंगा तो मेरे ऊपर ये सारी बात आई। सो ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे बेहतरीन जरिया यही है कि आप दोनों साइड ऑफ द स्टोरी को सुने और फिर फैसला करें, और जो कोई किसी के बारे में आपको आके कोई भी खबर दे रहा है तो उसको क्रॉस वेरीफाई करें। आप जाहिर है बहुत सारे इमोशंस होते हैं आपके अंदर और बहुत सारे मामला होते हैं, बाज दफा आपकी किसी के साथ बहुत अच्छे मामला नहीं चल रहे होते। सो ये यानी फ्लो ऑफ लाइफ है, ये ऐसे ही चलता है कि बाज दफा आपके बहुत अच्छे दोस्त आपके
1: अगेंस्ट हो जाते हैं,
0: मतलब
1: लेकिन यह है कि लीडरशिप इसी को कहते हैं कि आपने अगर लीडरशिप करनी है तो आप में ये क्वालिटीज भी होने चाहिए कि आप हर चीज को, हर इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सके और अच्छे ठंडे दिमाग से जो है वो फैसला कर सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाहिर है ये पोजिशन लेना आसान नहीं है और इसकी जिम्मेदारियां भी उससे ज्यादा। अच्छा जैन, आपने माशाल्लाह बहुत काम किया है, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आप इस पोजिशन पर हैं तो लंदन में जो मीडिया के मुस्तकबिल के लिए अगर कोई अहम तब्दीली आपको लाने का मौका मिले तो वो मेन चेंज क्या होगा जो आप करना चाहते हैं?
0: टू बी वेरी फेयर, अगर मुझे कोई शख्स ये जिम्मेदारी दे तो मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे काम करना चाहूंगा। उसके पीछे वजह यह है कि देखें हम बिकॉज हमने दो जगह को कवर करना होता है, यानी हमने लंदन के मामला को भी देखना है और पाकिस्तान के भी मामला को देखना है, और खासतौर पर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा यहाँ पर है उनकी खबर को देखना है। सो मामला ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, वो उस प्रॉपर ट्रेनिंग से गुजर के नहीं आए होते। सो जब वो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ गुजर के नहीं आए होते तो उनको चीजें समझाना, उनको चीजें बताना वो उतना आसान नहीं रहता। और दूसरा ये है कि यहाँ पर मीडिया जो है वो फर्स्ट जॉब नहीं है बहुत सारे लोगों की, यानी जब आप बतौर साथी काम करें तो ये आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बल्कि ये आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ जो है वो जो आपका लव फॉर मीडिया है या लव फॉर स्क्रीन है उसकी वजह से आप कर रहे होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपने पैरेलल दो चीजें लेके, आप पाकिस्तान में कोई अगर प्रोग्राम होता है तो ही और शी डजंट नीड टू डू एनी अदर वर्क फॉर देयर लिविंग। तो यहाँ पर यह है कि आपको पैरेलल कोई चीजें वो भी करनी पड़ती हैं, यानी आपका जो दाल रोटी है वो कहते हैं ना छान मारे हैं फलसफे सारे दाल रोटी सब पे भारी है, तो दाल रोटी जब तक आपने आपकी वो पूरी नहीं होती तो आपको बाकी सारे काम जो है वो पसे पुष्ट आ जाते हैं। सो अब मामला ये है कि यहाँ पर आपने ये चीज कैसे पैरेलल लेके चलनी है कि आपके जो पर्सनल मामलात हैं, आपका जो रोजगार है वो, और जो आपकी साफत, जो आपका पैशन है वो कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, तो ये बड़ी मुश्किल चीज है। इस पर जो ट्रेनिंग्स हैं इसको किस तरह से मतलब पैरेलली दोनों चीजों को लेके चला जा सकता है, इस पर मेरे ख्याल में काम करने की जरूरत है और इस पर मैं जरूर कोशिश करूंगा, या मेरी ख्वाहिश है कि इस पर काम जो है वो करना चाहिए।
1: जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जैन, एक और बात है कि आजकल माशाल्लाह एआई का, जैसे आपने बताया कि दौर है और एआई है, मिस इन्फॉर्मेशन है और ऑनलाइन प्रेशर है, ये तमाम जो चीजें हैं इनका बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना है आजकल जर्नलिस्ट को। तो एज अ लीडर मैं पूछना चाहूंगी कि जो कम्युनिटी के जो जर्नलिस्ट हैं तो उनके लिए, उनको इन चैलेंजेस के लिए आप किस तरह तैयार करना चाहेंगे, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे?
0: देखिए मेरा ख्याल ये है कि आप अपने जो आपका जहन है, एक एक अगर आप पीछे देखें तो थ्रू आउट जितने भी लोग हैं वो बगैर एआई के, बगैर चैट जीपीटी के उन्होंने जिंदगी गुजारी है और बड़ी बेहतरीन जिंदगी गुजारी, बड़ी बेहतरीन साफ। तो मामला जो है, तो मेरा ख्याल ये है कि आप AI से, अगर मैं भी AI से

0: जी वेलकम बैक मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी. जी हाँ, बात हो रही है आज दूसरों की मदद कैसे की जाए, किस तरह से उनसे उनको जो है स्टेबल किया जाए, मुस्तहकम किया जाए, और किस तरह से पाकिस्तान का नाम, अपने मुल्क का नाम अब दुनिया में क्यों किसी भी कोने में बैठकर आप रोशन कर सकते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा भट्टी. सिद्रा भट्टी से हम बात कर रहे हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन राह खिदमत के बारे में. अच्छा सिद्रा, एक बड़ा अहम क्वेश्चन ये है कि अक्सर आप जब किसी की मदद करते हैं तो क्या होता है कि उस मदद लेने वाले की इज्जत नफ्स भी मजरूह होती है, ये कुछ इस तरह. कोई ऐसी टिप बताएं जिससे जो लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर वे से वो उनकी मदद भी कर सकें और जिसकी कर रहे हैं उसको ये फील भी ना हो कि उसके उसको जो है ना लो फील कराया जा रहा है. जरा इस पे रोशनी डालें.
1: मरियम, बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आस्क किया जाता है. और वैसे तो इस्लाम में ये है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले कि तुमने किसी की मदद की है. तो अगर हम उसकी इज्जत नफ्स को उसका ख्याल रखेंगे सफेद पोश का, तो इट्स सो गुड इन इस्लाम. बट हम जो हैं, अब मैं आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बताती हूँ कि हम कैसे काम करें. हमारे पास जो सारी एप्लीकेशंस आती हैं, हमारे पास केस आते हैं, हमारे लीडर्स उनको वेरीफाइड करते हैं. और यस, वी डू आस्क देम कि हम आपको, क्योंकि आपको पता है एक एक पैनी हमारे पास अमानत होती है. हम उनसे जरूर कहते हैं कि आप हमें वीडियो बना के दें, लेकिन ताकि हम बताएं कि आपकी अमानत हकदार तक पहुंची है. लेकिन हम उनकी प्राइवेसी का कैसे ख्याल रखते हैं कि हम उनकी जो हमें, फॉर एग्जांपल, हम उनसे परमिशन लेते हैं पहली चीज. और ज्यादातर ये होता है कि हम उनका फेस ही नहीं दिखाते. हम उनके सिर्फ हैंड्स को दिखा रहे होते हैं कि हमारे एक, या उनकी आवाज सिर्फ रिकॉर्ड कर देते हैं. तो जैसे हमने राशन पैक्स दिए तो ख्वातीन की सिर्फ आवाज यूज हुई थी. तो ये इसलिए था कि ताकि हम मोटिवेट करें अदर्स को कि आप लोग भी, एक अच्छा काम हो रहा है उसमें हमारा साथ दें. लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह जहां पे वो बिल्कुल भी वो नहीं चाहते थे कि उनकी पिक्चर वीडियोस कहीं पे भी आए. तो हमने उनकी प्राइवेसी को मलूजे खातिर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, और बस हम एज ए एविडेंस स्लिप कि आपको मनी रिसीव हो गई है, आप एक मैसेज कर दें. क्योंकि हमें भी अपने आप को लॉस को कवर करना पड़ता है, क्योंकि ये यूके यहाँ पे एक एक एविडेंस सबमिट होता है कि हमने, आपने एक, आपके पास जो रकम आई थी आपने वो कहाँ यूज की है. तो फिर हमने अपने आप को भी इस तरह कवर किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह.
0: अच्छा सिद्रा, माशाल्लाह, ये भी मैं बताना चाहूंगी अपनी ऑडियंस को भी, अपने लिसनर्स को भी, कि माशाल्लाह आप इलेक्शंस भी में भी आपने पार्टिसिपेट किया है. आप डेफिनेटली, ये कोई बात नहीं है हर बंदा की विनिंग ही हो, तो आप खुद की जो पर्सनैलिटी है ना, यही बहुत बात है कि आप में इतना करेज है कि आपने उन इलेक्शंस में जो है आप स्टैंड किया. काउंसलर का इलेक्शन था, आप उसके बारे में जरा रोशनी डालेंगी कि कैसी कैंपेन थी आपकी, आपके लिए लर्निंग लेसन उस कैंपेन से क्या था.
1: मरियम, बिल्कुल, मैं एलम पार्क, हमारा ईस्ट लंदन की तरफ एक एरिया है, वहां की तरफ से अपनी मार्गरेट जो हमारी एमपी है, आई लाइक हर सो मच, शी इज डूइंग ब्रिलियंट वर्क माशाल्लाह, एंड शी इज द वन जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, एनकरेज करती है मैडम मेयर. और उन्होंने मुझे कहा था कि सिद्रा, तुम 10 साल से लेबर से हो और तुम जस्ट आओ, इस तरफ आओ, स्टेप लो. तो मुझे जो इस तरफ किया गया था एलम पार्क से नॉमिनेट. और अगर तो मुझे, आपको पता है यहाँ पे सारे एरियाज थोड़े से चैलेंजिंग भी हैं, जहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमें सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है. तो इसलिए मुझे कहा गया था कि आप ज्यादातर जो और एरियाज हैं वहां पे आके हमारी हेल्प करें. तो लेकिन ऑन द अदर हैंड, ये आपके लिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है, लर्निंग है. आप सिस्टम में आए, चीजें देखें, लर्न करें, ग्रो करें. तो दैट्स व्हाई मैंने उनको यस कहा था अल्हम्दुलिल्लाह. और मेरा रिस्पांस बहुत ग्रेट आया है अल्हम्दुलिल्लाह. और इंशाल्लाह आई एम सो एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड कि मैं फ्यूचर में अच्छा और खुलकर कंपेन करूंगी ओपनली. And then we can achieve more aims and objectives.
0: जबरदस्त, यही बात है कि आप जिंदगी में हर स्टेज पर कुछ ना कुछ सीखते हैं और सीख कर आपको वो एक स्टेज आती है कि आपको वो कहीं ना कहीं पहुंचा देती है. इसी तरह ये बहुत, मैं बहुत इम्प्रेस थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जब लोग ऐसे नॉमिनेट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तो फिर जो है ना बड़ी बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, बड़ा प्राउड मोमेंट होता है. अच्छा सिद्रा, लास्ट जो है फ्यू मिनट्स जो है हमारे प्रोग्राम के सेगमेंट के चल रहे हैं आपके साथ, मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपके फ्यूचर प्लान्स राह खिदमत के. और ये भी पूछना चाहूंगी, माशाल्लाह आपने इतना काम किया, आप क्या समझती हैं कि एक चीज वो रह गई है जो मैं जरूर करना चाहूंगी और राह खिदमत ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है

0: रोशन करना चाहूंगी, बताइए.
1: मरियम, मैं जो है ना, पहले तो एक शेर जो हमेशा मेरे दिमाग में पीछे चल रहा होता है वो जरूर पढ़ूंगी. तमन्ना है कुछ दीनियों मिली काम कर जाऊं, तमन्ना है कुछ दीनियों मिली काम कर जाऊं, मोहब्बत और अखुवत का पैगाम आम कर जाऊं. तो 100 बातों की एक बात, मोहब्बत बांटेंगे. पॉजिटिविटी बहुत अहम करती है किरदार. पॉजिटिव रहें और नेगेटिविटी को अपने अंदर ना लाने दें और खुशियां बांटें. वही बात अगेन कि लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल. अपनी तरफ से 100% करें, बाकी अल्लाह की जात गफूर रहीम है. इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला जरूर आपको कामयाबियां देगा. कभी मायूस ना हो. थोड़े से चीजें मुश्किलात होती हैं शुरू में, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप स्टेप लें, हिम्मत करें और आप कर जाएंगे. और हमारे फ्यूचर प्लान्स राय खिदमत के, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ और मुझे रात को नींद सुकून से आती है अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती कि मैं रातों रात बहुत ही ऊपर चली जाऊं. नो, मैं बेबी स्टेप्स लेके ऐसे चाहती हूँ कि मेरा जमीर मुतमईन हो और मेरी टीम सेटिस्फाइड हो और हम सब आराम से काम करें, लोगों की फलाह के लिए काम करें. हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जो हम चाहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारे कुर्बानी का प्रोजेक्ट, राशन पैक्स, रमजान की बात की जाए, स्कूल की बात की जाए और दीनी दुनियावी तालीम की बात की जाए, बच्चों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स की बात की जाए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेटिस्फाइड. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में तो अल्लाह ताला इज्जतें दे रहा है. दुआ यही है कि आखिरत में भी ये चीजें हमारे काम आ जाए इंशाल्लाह.
0: बेहतरीन सिद्रा, बेहतरीन आपका मैसेज था और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और जरूर इंशाल्लाह आप अपने मकसद में कामयाब होंगी और लोगों के लिए आप राह हिदायत बनती चली जाएंगी. बहुत शुक्रिया सिद्रा आपकी इस खूबसूरत साथ का, इस खूबसूरत बात का. जजाकल्ला. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
1: वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक्स इस्लाम मीडिया. टेक केयर.
0: जी ये थी हमारे साथ सिद्रा भट्टी और इनके साथ मिलकर जरूर आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि इनकी जो खिदमात हैं वो इंसानियत की खिदमत जो है वो ये कर रही हैं और मेरे ख्याल में कि इससे बेहतरीन काम दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया के आखिरत में कोई नहीं है. तो अल्लाह सुबहान व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह सुबहान व तआला इन्हें इनके मकसद में कामयाब करे और इन जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो इनके साथ जुड़ जाएं और दुनिया में जहां जहां हैं वो अपनी तौर पर लोगों की मदद, इंसानियत की खिदमत कर सकें. जी वक्त हुआ जाता है छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम आएंगे अपने दूसरे गेस्ट के साथ. उनके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे. वो जो है बहुत सारे पेरेंट्स को कनेक्ट करेगा क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया हैंडलिंग की, किस तरह सोशल मीडिया को हैंडल किया जाए बच्चों के साथ, बड़ों के साथ और खुद आपकी प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पे हम आज बात करेंगे. हमारे साथ नेक्स्ट गेस्ट मौजूद होंगी. इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा. स्टे ट्यून्ड ऑन सलाम मीडिया.
2: In South Africa, countless numbers of sick patients leave their homes at the crack of dawn to join long queues at clinics and public hospitals, many of them suffering pangs of hunger in addition to the symptoms of disease. The Al Imdad Foundation's Slice for Life teams deliver sandwiches to these patients at more than 40 hospitals and clinics across the country. Help us to keep on relieving hunger. Donate online at alimdad.com or call 0861-786-243 for more information.
3: You know, it's a wonder how kids get anything done these days. With all the distractions, when do they even get time to study? As a mother, all I can really do is make sure they have all they need to perform at their best. That's why I choose to include Sunfoil Triple Refined Pure Sunflower Oil with every meal I make. Naturally cholesterol-free and approved by the Heart and Stroke Foundation as part of a balanced eating plan. So whether I'm cooking, frying or baking, I know every dish will be a wholesome one. Sunfoil. Now we're cooking.
4: When the perfect blend of stylish decor, exquisite halal cuisine and warm hospitality come together, it could only mean Al Bayt Lodge. Your true home away from home. Al Bayt is the ideal heaven for families, business people and tourists with its 4-star family rooms and other luxurious facilities. Conveniently situated close to Port Elizabeth Airport, the beach and other amenities. Your stay will be truly unforgettable as you'll be taking home lasting memories of the warm hospitality, the serenity and tranquility that Albayt has to offer. For reservations, call 041-583-6415 or visit www.albaytlodge.co.za.
5: Right now, over 150 million children around the world are orphaned, facing hunger, hardship, and uncertainty. With Islamic Relief's Orphan Sponsorship Program, you can provide a child with access to education, nutritious food, essential health care, and a safe home. Your sponsorship is not just support. It's hope, security, and a brighter future. Be the reason an orphan child smiles again. Sponsor an orphan today with Islamic Relief.
6: It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism. Listen to something fresh. Listen to Salam Media.
0: जी, मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी, मैं हूं आपके साथ. और जैसे कि आप जानते हैं कि सलाम मीडिया की उर्दू ट्रांसमिशन जो है, स्पेशल एडिशन जो है, वो चल रहा है. और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम हाशमी. और मेरी कोशिश यही है कि हम जो है ऐसी गेस्ट आपके प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम में लेकर आए कि जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, कुछ ना कुछ जो है हम उनसे नॉलेज जो है वो गेन कर सके. हमारे साथ हमारी दूसरी गेस्ट, बहुत प्यारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और सॉलिसिटर हैं, माशाल्लाह लॉ को बहुत अच्छे से जानती हैं. और मैं क्या कहूँ उनके बारे में, वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है. और यही है कि आप उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और आपको पता लगेगा कितनी माशाल्लाह उनमें स्किल है, कितनी माशाल्लाह उनमें जो है उनको नॉलेज है और कितना ज्यादा उनसे बात करके आपको आसानी होती है. अगर आप किसी जगह फंस गए हैं, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, अगर आपके जो है माइंड में या आपको कोई लीगल चीजें एडवाइस करने वाला नहीं है, तो आई थिंक वो जो है बहुत अच्छा अपना काम कर रही हैं. जहां पर हैं वो बहुत अच्छे से लोगों को हैंडल करते हैं, बहुत अच्छे से केसेस को हैंडल करते हैं. तो मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी मिसेज रोमाना कौसर. आइए अपने प्रोग्राम में उनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम रोमाना. कैसी हैं आप? ठीक है रोमाना?
7: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसी हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. रोमाना बात हो रही है यूके की. यूके का वेदर आज कैसा है?
7: आज माशाल्लाह बहुत बहुत दिनों के बाद आई थिंक आज बारिश हो रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे.
0: जबरदस्त जबरदस्त. अच्छा रोमाना, बात आज का जो टॉपिक है, जैसे आपको पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़े लोगों के दिलों को छू जाने वाला ये टॉपिक है, क्योंकि जाहिर है सोशल मीडिया का इस्तेमाल छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग कर रहे हैं. लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस बात का, वो ये है कि अंदाजा नहीं है कि कौन सी चीजें प्राइवेट होनी चाहिए, कौन सी चीज जो है ना वो आपकी बाहर नहीं आनी चाहिए, या आपके पास पर्सनल, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या पर्सनल चीजें. हम समटाइम ख्याल नहीं करते, बहुत सारी चीजें हम अग्री कर देते हैं विदाउट रीडिंग एनीथिंग. और ये आप जरा इस पे रोशनी डालें कि कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी चीज को साइन अप कर रहे हैं या आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसको उसकी नॉलेज होना कितना जरूरी है. जरा इस पे रोशनी डालिए, बताइएगा.
7: जी डेफिनेटली ये बहुत बहुत जरूरी है कि कोई भी प्लेटफॉर्म आप साइन अप कर रहे हैं, यू नो, किसी भी एज ग्रुप में आप हो, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपको उनका बैकग्राउंड, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करें उनका, उनकी हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर रहे हैं या पिक्चर सेंड करें, क्या वो स्ट्रीम्ड है, आदई यू नो आपकी वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा रखते हैं कि नहीं. फेसबुक पे भी ये टॉपिक रेज हुआ था एंड जो भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया पे, इस पे भी रेज हुआ था. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपने कहा कि जो जब हम साइन अप करते हैं उसमें बस रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन पढ़ता है, इतने डिटेल्स में कोई भी नहीं जाता. एंड अगर कोई पढ़ भी लेगा उसमें इतनी उनको शायद नॉलेज ना हो कि एग्जैक्टली कोई भी क्लोज क्या कह रहा है, कि वो आपकी इंफॉर्मेशन रिटेन करेंगे, जो आप डिटेल्स दे रहे हैं या जो आप फ्यूचर में शेयर करेंगे, क्या वो डेटा रिटेन होगा. आई मीन नॉर्मली आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया पे, मतलब एवरीथिंग, यू नो, इट्स हार्ड टू कंट्रोल कि आप क्या इनपुट दे रहे हैं सोशल मीडिया को एंड कौन से प्लेटफॉर्म कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी यूज कर सकते हैं या रिटेन करते हैं.
0: सही. अच्छा कौन सी चीजें जो है हम पोस्ट कर सकते हैं हमारे लिए सेफ है, जैसे कि पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, उनसे पहले कंसेंट जरूरी है, इजाजत जरूरी है, या हम जो है उसको एज इट इज पोस्ट कर सकते हैं?
7: आई मीन आजकल बिकॉज यू नो सोशल मीडिया सच अ लार्ज प्लेटफॉर्म एंड ये नहीं कि कोई एक ऐप, इट्स लाइक एवरी, यू नो, बहुत सारी सोशल मीडिया एप्स हैं. कुछ लोग यूज करते हैं ऑब्वियसली पॉजिटिव वे अगर हम देखें तो यूज करते हैं मार्केटिंग के लिए, आपको न्यूज अपडेट्स देने के लिए और कोई भी बिजनेस प्रमोट करने के लिए, तो शॉपिंग के लिए सब यूज करते हैं. तो पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो इट्स गुड टू शेयर कि आप चीजें शेयर करें, लोगों को अवेयरनेस मिलती है, लोगों को नॉलेज मिलती है. सो ये मतलब इट्स इन अ गुड वे. बट आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि आप क्या चीज सोशल मीडिया पर शेयर करना चाह रहे हैं. बिकॉज वंस जब आप शेयर करते हैं इट बिकम्स पब्लिक. अगर आपने उस पर यू नो ऑप्शन उस पर रखे कि आपकी प्रोफाइल पब्लिक है तो वहां से तो कोई भी वो चीज यूज कर सकता है, फोटोज या आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हैं उस पर कोई भी पिकअप करके उसको यूज कर सकता है. लोग शेयर करते हैं, लोग फॉरवर्ड करते हैं, स्क्रीनशॉट्स लेते हैं. तो ये सारा यू नो ऑब्वियसली यू कांट कंट्रोल दैट. तो ये यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या इनपुट दे रहे हैं सोशल मीडिया को.
0: सही. अच्छा, ये जो आपने जैसे बात की है पब्लिक की, कि इसका मतलब होता है फ्री टू यूज, कि आप किसी की पिक्चर या किसी का प्रोफाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. और ये तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि जहां पर फिर भी अगर आप इनकी फ्री टू यूज या पब्लिक चीजों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी वो परमिशन लेनी जरूरी है.
7: ऐसा नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे. अगर आप देखें अगर किसी की प्रोफाइल, फॉर एग्जांपल मेरी प्रोफाइल अगर पब्लिक है और मैं कोई भी इमेज शेयर करती हूँ तो द फैक्ट आई हैव मेड इट पब्लिक किसी को मैं स्टॉप नहीं कर सकती. यू नो आई वुडंट नो कि किसने स्क्रीनशॉट लिया है, किसने फॉरवर्ड किया, किसको आगे किस कहाँ पे लगाई है. मैं भी अपने प्रोफाइल पे शेयर किया है. सो उसमें कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है.
0: तो आप समझती हैं कि कंट्रोल होना चाहिए.
7: इसका ये है सोशल मीडिया इतना वो इट्स सो फास्ट कि आप इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते. यू नो अगर मैंने कुछ पब्लिक डाला है देन anyone has the right to take a screenshot and share
0: exactly.
7: it. अब मैं कैसे कंट्रोल करूंगी, आई वुड नॉट नो.
0: और बहुत ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन आ जाती हैं और मेरा ख्याल है ये भी बम्बार्डमेंट लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि हमें बार बार नोटिफाई हो रहा है कि ये जब हमने चीज पब्लिक कर दी. ये भी बड़ा इजी है, इसको अगर उन्होंने किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने किस तरीके से अपनी चीजों को जो है यूज करना है, अपनी पिक्चर्स अपनी वीडियोज को जो है उनकी प्राइवेसी को कैसे मेंटेन करना. अच्छा रोमाना, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि की यानी कि आप समझते हैं कि एक आम इंसान उसके लिए ये कितना समझना जरूरी है कि उसके सोशल मीडिया पर बुनियादी हकूक क्या है, बेसिक राइट्स क्या है, क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना इतना ही जरूरी है, इसके लिए वर्कशॉप्स वगैरह होनी चाहिए.
7: डेफिनेटली होनी चाहिए वर्कशॉप्स स्पेशली जो ओल्डर जनरेशन है जो शायद सोशल मीडिया आजकल यूज करते हैं, मे बी अभी तक सीख रहे हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि उनके राइट्स क्या है, उनको चीजें कैसे यूज करनी है. समटाइम्स यू नो किसी ने कभी कोई ऐप यूज नहीं किया हो, मे बी वो कुछ पोस्ट कर दे यू नो अपनी पर्सनल पिक्चर्स, शायद उनको नहीं लाइक इवन बच्चों की भी पोस्ट कर देते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये लाइव जा रही है या पब्लिक में है एंड कोई भी इसको मिस यूज कर सकता है, इसको कॉपी कर सकता है. तो उनके लिए वर्कशॉप होनी बहुत जरूरी. मैं समझती कि हमें इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए एंड इसके ऊपर आई बिलीव यू नो जहाँ पे मैं रहती हूँ लोकली वी डू प्रोवाइड दैट सर्विसेज. वर्कशॉप होते हैं इसको सिखाने के लिए भी, यूज करने के लिए भी एंड उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी कि आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं कोई भी ऐसे सिचुएशन.
0: जी रोमाना, ये जो फेक अकाउंट्स बनते हैं तो इस पे लीगल एक्शंस क्या लेना चाहिए अगर किसी के फेक अकाउंट्स बन जाए या कोई भी आइडेंटिटी आपकी लीक हो जाए तो उस पे आपके राइट्स क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके अलावा क्या कर सकते हैं.
7: जी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा. इसमें बहुत सारे आजकल ऐसे हो रहे हैं क्योंकि एज अ सोलिसिटर हम जैसे डिफेमेशन केस अगर किसी ने कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी पब्लिसाइज की है कहीं भी किसी भी मीडिया पोस्ट पे डाली है आप उसको स्टॉप कर सकते हैं. आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं. यू कैन गेट एन इंजंक्शन कि आप उस आइटम को उस पोस्ट को रिमूव करें. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है कि जो एक्चुअल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपने उनको रिपोर्ट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल किसी ने सोशल मीडिया पर कोई फेक आई डी बना के आपकी कोई पिक्चर या इन्फॉर्मेशन पोस्ट की है तो आप फेसबुक के ऊपर उनकी सेटिंग्स में इन्फॉर्मेशन होती है कि आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं अगेंस्ट दैट पोस्ट. तो फर्स्ट स्टेप आपने वो लेना होता है एंड आप फेसबुक को एक्सप्लेन करना होता है कि आप चाह रहे हैं कि वो आइटम या पिक्चर रिमूव हो जाए. सो जब वो रिमूव भी हो जाती है अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है एंड अगर रिमूव नहीं होती फॉर एग्जांपल आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं. आपको कोर्ट के थ्रू आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंजंक्शन कि वो चीज रिमूव की जाए. अब हमने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं कि वो अब मतलब आपको कोर्ट में भी जाके एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि आपको कैसे ये चीज अफेक्ट कर रही है, यू नो, आपकी कोई प्राइवेसी या कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन लीक हुई है जिसको आप स्टॉप करना चाह रहे हैं. समटाइम्स ऐसी इमेजेस भी होती हैं जिससे लोग अपसेट हो जाएं, या यू नो मे बी कोई इंसिडेंट हुआ हो एंड किसी ने कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल एन आर्ग्यूमेंट ऑफ एन इंसिडेंट ऑफ वायलेंस हुआ हो और किसी ने वो पोस्ट कर दी है, चीजें शेयर की हैं, उसके अगेंस्ट भी आप एक्शन ले सकते हैं.
0: सही. अच्छा रोमाना, एक और बड़ा अहम क्वेश्चन ये आपने जैसे बात की है कि हम पोस्ट डिलीट कर देते हैं तो हम बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, तो क्या ये ट्रू है, वो चीज वहां से डिलीट हो जाती है कि नहीं होती?
7: अनफॉर्चुनेटली नहीं होती. आप ऐप पे अगर देखें या कहीं भी किसी ने पोस्ट की हो वहां से वो डिलीट चीज हो जाएगी, लेकिन एक्सटर्नली किसी ने कहाँ पे और कहीं पे डाली है, अपने ही सोशल मीडिया अपने प्राइवेट प्रोफाइल पे डाली है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. इट्स सच अ लाइक इट्स सच अ ट्रेंड के लोग स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, तो अगर किसी ने कोई चीज डाली है जिसके अगेंस्ट आप क्लेम करें कि उसको रिमूव किया जाए, हो सकता है उस प्लेटफॉर्म पे वो रिमूव हो जाए, लेकिन उसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वे कहीं और उन्होंने शेयर किए होंगे अपने व्हाट्सएप पे, प्राइवेट, यू नो, प्राइवेट आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, एंड कितने लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे. अब जैसे कोई वीडियो वायरल हो जाती है, इट्स एवरीवेयर, you know, social media, Instagram, WhatsApp.
0: Even you delete it, but it's everywhere. It is true.
7: It's everywhere. Yes. You can't control that. Even the courts cannot control that. Ki har jagah se aap remove kare.
0: सही. अच्छा हम जो जो पर्सनल डाटा, अपनी लोकेशन, अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह, ये जब हम अपनी जाहिर एवरीडे सब लोग शेयर करते हैं, तो हमें ये कोई ऐसा टूल नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से हमें पता चले कि हमारा डाटा कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, या अगर कोई पर्सनली कलेक्ट कर रहा है तो हमें कोई नोटिफिकेशन आ जाए या कुछ ऐसा? क्या ये जब ये एप्स बनाते हैं तो इनमें ये ऐसी चीजें क्यों नहीं डालते, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर क्यों इसमें ऐड नहीं होता है? आप क्या समझते हैं इसकी जरूरत है?
7: हर सॉफ्टवेयर में नहीं होता ये कि आप ट्रैक कर सके कि कौन सी इंफॉर्मेशन इनको ले रही है, लेकिन किसी भी ऐप में अगर आप देखिए उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं उनमें ये क्लोज होता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इट्स देयर प्रॉपर्टी कि आप उनके ऐप पे डाल रहे हैं, बट दे कांट मिसयूज इट ऑब्वियसली, लेकिन उनके कंट्रोल में होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ चीज डालूं देन दे कैन कंट्रोल कि अगर मुझसे वो कहे कि ये दिस इज ऑफेंसिव आपको रिमूव करना है. अब एग्जाम्पल आप लें टिकटॉक पे, अगर कोई भी चीज टिकटॉक पे आप डाल रहे हैं वेदर आपकी प्रोफाइल पब्लिक है या नहीं, टिकटॉक आपको स्टॉप कर सकता है ये चीज डालने से अगर वो आप उनके कंडीशंस ब्रीच कर रहे हैं. इन द सेम वे इट मीन्स के टिकटॉक ऐप जो है वो आपकी वीडियोज और जो भी आप डाल रहे हैं वो रखते हैं उनका रिपोर्ट, उनके पास होता है, दे आर रिव्यूइंग व्हाट यू पुट डाउन एंड दे कैन आस्क यू टू रिमूव इट एंड दे कैन डिलीट इट देयरसेल्फ. सो इसमें आई थिंक डिफरेंट एप्स के डिफरेंट रेगुलेशंस हैं, तो कोई भी आप यूज करने से पहले आपको उनके रेगुलेशंस डेफिनेट करने चाहिए.
0: अच्छा ये जो बच्चे हैं, आजकल बच्चे भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारी एप्स हैं जिसपे वो बात भी करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ये क्या ये सेफ है और क्या ये यूज होना चाहिए?
7: आई थिंक विद सोशल मीडिया एंड एप्स अगर आप बच्चों के हिसाब से अगर देखें देयर्स टू साइड्स टू इट. एक तो एक पॉजिटिव साइड है कि सोशल मीडिया से आप चीजें सीख सकते हैं, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो सकती है, आप लर्न कर सकते हैं ऑनलाइन, आप रिसर्च कर सकते हैं ऑनलाइन. सो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को मिला हुआ है कि यू नो जैसे अगर किसी ने कोई पोस्ट वर्क या कुछ करना है तो उस पर वो रिसर्च करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. पीपल यूज इट, चिल्ड्रन यूज इट इन अ पॉजिटिव वे. लेकिन अगर आप नेगेटिव साइड देखें, social media is being misused by children, you know, and it's affecting them, it's affecting their well-being. Bahut saare incidents humne aise dekhe ki bachcho ne misuse kiya hai na unko, like for example grooming ka shikar hote hain, different things, you know. Isme parents should have a control ke unke bachche kya use kar rahe, kis extent tak use kar rahe.
0: Ji, parental responsibility. Ji, parental responsibilities pe inshallah hum is break ke baad baat karenge. Time ho jata hai, ek chote se break ka, milte hain aapse is break ke baad. Stay tuned on Salaam Media.
8: Right now in lands many of us feel deeply connected to, a mother holds a sick child worried and fearful as she knows her nearest hospital has been destroyed. This is the mother we go beyond borders to reach. Doctors Without Borders is there in the world's toughest places. We go where others can't or won't, and we go immediately. When you give to us, we go even further. Visit msf.org.za/sadaqa, that's SADAQAH, and support Doctors Without Borders today. Doctors Without Borders, we go there.
9: Discover the Africa of your dreams and surround yourself with her spectacular beauty. Relax beneath her serene sunsets and explore wildlife at its natural best. It's where the pride of Africa comes together. The Kwantu Private Game Reserve. Get to know the Big Five or cruise on an elephant safari game drive. Interact with lion and tiger cubs and enjoy world-class halal cuisine while we pamper you during your five-star stay. Indulge in the true African experience. For reservations, call now on 042-203-1400 or visit kwantu.co.za. The Kwantu Private Game Reserve, the place of gathering.
10: World-class financial services only at Safi Global, your financial partner. If you are looking for Islamic, Sharia and ethical financial products, look no further. Sapphire Global offers a wide range of financial service offerings from short-term to life and investments. A full-service center with all financial requirements under one brand. Our highly skilled and experienced consultants are ready to help protect your financial future. Contact us on 041-001-0184. Or visit our website on www.sapphireglobalfs.com. Sapphire Global is an authorized financial services provider.
11: Tonight, a child in a shack will try to sleep through the cold. No heating, no insulation, just thin walls and a biting cold. African Muslims Agency is on the ground, reaching families in informal settlements across South Africa with blankets and winter essentials. Help us spread warmth this winter. For 180 Rand, give a blanket. For 360 Rand, a full winter pack. One gift, one less night in the cold. Africa Muslims Agency. Empowering, educating, inspiring.
12: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media. It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism.
0: Gee, welcome back with mid-morning talk with Mariam Hashmi on Salam Media from Johannesburg. Gee, haan, hum baat kar rahe hain online data control ki, ki kis tarah aap apne data ko control kar sakte hain, apni information ko aap, apni privacy ko aap safe kar sakte hain. Acha, Romana, और कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का बहुत ज्यादा रुझान बढ़ गया. जाहिर सी बात है कि उनकी फिर बच्चों की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो चाहे एज अ स्कूल आप स्टोर करते हैं तो उसमें वालिदैन का कितना राइट है, कितना हक है कि वो अपने बच्चों की इंफॉर्मेशन के बारे में जान सकें कि कितने साल तक उनके बच्चों की इंफॉर्मेशन उस स्कूल के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड रहेगी.
7: जी डेफिनेटली पेरेंट्स का फुल राइट होता है, स्पेशली एजुकेशन के हिसाब से पेरेंट्स हैव द राइट के वो स्कूल से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि इंफॉर्मेशन कितनी स्टोर यू नो कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है बच्चे के बारे में एंड कब तक होगी. बिकॉज ऑनलाइन तो इट कुड बी फॉर एवर, लेकिन पहले जो ये सिस्टम था कि ऑन पेपर आपकी रिपोर्ट से आपकी आपके जो स्कूल वर्क आपने किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर रहती थी, लेकिन अब ये सब कुछ ऑनलाइन है. इवन होमवर्क भी होता है वो ऑनलाइन एप्स पे होता है, क्लासेस भी ऑनलाइन होती है. सो पेरेंट्स के पास डेफिनेटली राइट्स होते हैं कि आप स्कूल से कॉन्टेक्ट करें, उनको अप्रोच करें और इन्फॉर्मेशन लें.
0: सही. अच्छा रोमाना, स्कूल्स में आप क्या समझती हैं उनके करिकुलम में उनकी उसमें ऐड होना चाहिए कि बच्चों को अपनी ऑनलाइन सेफ्टी का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इसकी आप कितनी अहम जरूरत महसूस करती हैं?
7: जी इसमें ये जरूर बहुत जरूरी है. आई मीन इस पे काफी लोग जो है लेट ऑन स्कूल के बाद भी इसमें आप इसके ऊपर पूरे कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे साइबर क्राइम के ऊपर भी एक आप एजुकेशन ले सकते हैं. लेकिन आई थिंक इस टाइम इस स्टेज पे स्कूल की एजुकेशन में भी बहुत जरूरी है. स्कूल में सिखाना चाहिए कि अगर आप सोशल मीडिया यूज करें तो उसको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है एंड सेफ्टी कैसे रखनी है. वो बहुत जरूरी है बिकॉज इट्स नॉट जस्ट एप्स एंड यू नो सोशल मीडिया एप्स, इवन विद गेम्स कम्युनिकेशन एक्सटर्नल लोगों से आप कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो डेफिनेटली ये बहुत जरूरी है.
0: सही, आजकल जैसे गेम्स वगैरह बहुत ज्यादा हैं, तो पेरेंट्स डेफिनेटली, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको इस टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, तो आप जरा उनको एडवाइस करेंगी कि वो किस तरीके से अपने बच्चों के उस गेमिंग डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं, कि वो कहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी लोकेशन वगैरह वो डिफरेंट जगहों पर शेयर करें, क्योंकि कुछ एप्स या कुछ गेम्स ऐसी हैं जो आपसे लोकेशन और आपकी इन्फॉर्मेशन मांगती हैं, तो क्या उन एप्स को या उन गेम्स को अवॉइड करना चाहिए, या अगर कर लें तो फिर उसके लिए क्या सेफ्टी कंसर्न्स होने चाहिए?
7: आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउडेज के आप बच्चों को स्टॉप करें, बिकॉज अगर आप किसी भी गेम से या किसी भी ऐप से उनको स्टॉप करेंगे, बच्चे दूसरे बच्चों को देख के देर वांट इट एज वेल, सो उनको भी होगा कि हम भी मतलब ये गेम लें या डाउनलोड करें. बट आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली एप्स की जो सेटिंग्स होती हैं, आपको उनको यूज करने से पहले उनको स्टडी करना चाहिए कि उनकी आप लोकेशन प्राइवेटाइज कैसे कर सकते हैं. अब हर ऐप में जरूरी नहीं कि आपने डेफिनेटली अपनी लोकेशन देनी है, एंड अगर आप नाम भी दे रहे हैं बच्चे का, देन वो भी आप चेंज कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू हैव द एक्चुअल नेम. सो आई थिंक जो सेटिंग्स में होता है वो डेफिनेटली पेरेंट्स को प्रॉपरली चेक करना चाहिए, और अगर वो नहीं समझते देन यू कैन गेट, आप एडवाइस ले सकते हैं लोगों से, एक्सटर्नल एडवाइस इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि ऐप के ऊपर यू नो एडवाइस करें कि इसको कैसे कंट्रोल करना है. कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको नहीं समझ आती या अंडरस्टैंड नहीं होता कि वो ऐप्स कैसे चलते हैं, बट डेफिनेटली लोकेशन जो है आप यू कैन हाइड इट, आप उसको पब्लिसाइज नहीं करें.
0: राइट. अच्छा रुमाना, बहुत इम्पॉर्टेंट आजकल की इस डिमांड बन चुकी है या जरूरत बन चुकी है, चाहे पेरेंट्स की चाहे बच्चों की, एआई टूल्स. मैं किसी टूल का नाम नहीं लूंगी, लेकिन हम एआई टूल्स की बात करते हैं, बहुत एजुकेट भी करते हैं, लेकिन हमारा डाटा जो है वो वहां पे स्टोर भी हो रहा है. बच्चों की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो आपसे डेफिनेटली आप स्टोर करवा रहे हैं या कर रहे हैं. ये कितना जरूरी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की बनती है, या इन टूल्स पे आप टोटली रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
7: Yeah, definitely I would not suggest के आप हर टूल के ऊपर रिलाई करें, एंड यू कांट ट्रस्ट बिकॉज AI is such a you know large tool के everyone is using it.
0: Everyone, yes.
7: In a positive way, or even like if someone's misusing it, you have to be very careful के आप अपने बच्चों की अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फोटोज आप किस तरह उसमें ऐड कर रहे हैं, उसको यूज करने का. यही होता है ना कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन और अपने पिक्चर्स अपलोड करें, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप उनको क्या देना चाह रहे हैं. एंड ये होता है कि लोग फ्यूचर में मिस यूज कर सकते हैं, स्पेशली बच्चों की पिक्चर्स.
0: बिल्कुल. और ये जो AI है, डेफिनेटली इसमें इसने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट है, बहुत ज्यादा तरक्की इसने कर ली है, तो इसका जो है इसका सही मेरा ख्याल है नॉलेज होना हर पेरेंट के लिए, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन भी और डॉक्टर एडवाइस भी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप AI से ही पूछते हैं और इनसे एडवाइस लेते हैं, लेकिन यह है कि फिर भी जो लोग हैं, प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, प्रॉपर टीचर्स हैं, जो वो एजुकेशन दे सकते हैं, तो वो मेरा ख्याल है ऑनलाइन हम इस तरह की चीजें हासिल ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल वे से सीखने में और ऑनलाइन सीखने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है. बहुत शुक्रिया रुमाना. कोई मैसेज देना चाहें आप हमारी ऑडियंस को, हमारे लिसनर्स को, कि किस तरह से जो है वो अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी, अपनी फैमिली को भी सेफ रख सकते हैं, कोई ऐसा फॉर्मूला बता दें कि भाई ये आप कर लें और आइंदा से इस चीज का ख्याल रखें.
7: आई मीन एक छोटी सी, मतलब a lot of parents ये स्क्रीन टाइम रख सकते हैं, जिससे लिमिट रख सकते हैं कि बच्चा कित कब तक मतलब स्क्रीन टाइम यूज करे. इट्स नॉट कॉन्स्टेंटली बच्चे फोन पे होते हैं.
0: और इंटरनेट का बहुत बेजा इस्तेमाल है, जैसे यूट्यूब का बहुत, यूट्यूब किड्स है वो भी बच्चे कई नहीं यूज करते, कि ये बिल्कुल जो है हमारी एज के मुताबिक है या नहीं है, लेकिन आप उनके कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और उनमें जो है आप नजर रख सकते हैं. लेकिन बच्चे भी आपको, रोमाना एक ये चीज भी बड़ी फील होती है कि बच्चों को ये लगता है कि हमें रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा, हमारे पे बहुत ज्यादा नजर रखी जा रही है, तो ये बैलेंस भी किस तरह रख सकते हैं हम, ये भी जरूर अपने मैसेज में.
7: बच्चों को समझाना पड़ता है, उनको देनी होती है इन्फॉर्मेशन कि अगर किसी ऐप पे किसी चीज पे लिमिट, एज लिमिट है, तो उनके फायदे के लिए है. यू नो, सो इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन टू चिल्ड्रन, स्पेशली यंग टीनएजर्स, दे मे नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि इसकी ये बाय लॉ है. यू नो इट्स नॉट, यू नो कुछ एप्स जो होते हैं अंडर 13 से आप नहीं यूज करते, लेकिन बच्चे यूज कर रहे होते हैं, लोगों ने डाउनलोड किए होते हैं.
0: बिल्कुल ऐसे.
7: एंड parents' responsibility. They need to, you know, take responsibility. So my advice would be just have to be really careful with what you allow your children. Lekin there are measures that parents can take. Screen time protect kar sakte hain apni content jo wo dekh rahe hain wo age limit mein dekha jaye.
0: सही मतलब आपका पेरेंटल कंट्रोल जो है बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए बहुत शुक्रिया रोमाना इतनी खूबसूरत नॉलेज का इतनी जबरदस्त जो है इंफॉर्मेशन का और बहुत सारी आपके लिए दुआएं हैं अल्लाह सुभान व तआला आपके लिए बहुत आसानी करे और आप हमें ऐसे ही लीगल एडवाइस जो है वो देती रहेंगे बहुत शुक्रिया अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़
7: थैंक यू